0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: ओह माय,
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
3: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: Excuse me please,
0: my name is Anthony Gonsalves.
2: How cute.
0: Right.

0: across the Emirates on FM 100.3 and online across the world. We are the home of news, sports and conversation. This is Talk 100.3. Henna Speedy Hair Colour. Right now. This is Fan Network News from the BBC.
1: BBC News with Emily Thomas. Ukraine says at least 15 people have been killed in a massive drone and missile attack by Russia. The Interior Ministry said the worst civilian damage was in Dnipro and Kharkiv in the east, and in Kyiv, which was pounded by a barrage of strikes. A partial ceasefire between Israel and Hezbollah, which President Trump announced on Monday, appears to be largely holding. A BBC correspondent in northern Israel says last night was relatively quiet by recent standards. There's been no fresh Israeli attack on Beirut, though some fighting in southern Lebanon. The World Meteorological Organization is warning that this year's El Niño weather pattern is very likely to develop into one of the strongest on record. The rare super El Niño is expected to cause surging global temperatures and extreme weather around the world. The European Parliament's International Trade Committee has approved a deal to remove tariffs on hundreds of US goods. It's a significant step towards implementing an agreement drawn up with the US, but still needs to be approved by the full EU Assembly. At least two people have been killed in protests against a US-backed Ebola quarantine centre near a military base in central Kenya. The victims died from injuries after clashes with police on Monday. Kenyan officials have not yet commented. The government of Mozambique says that five of its citizens have been killed in South Africa in what it called xenophobic attacks. They're the first deaths officially linked to weeks of anti-migrant protests. Local people have been calling for tougher action against undocumented migrants. Florida has become the first US state to sue OpenAI over the design and safety of the company's artificial intelligence chatbot, ChatGPT. The lawsuit alleges the company is endangering children. OpenAI deny wrongdoing. World News from the BBC.
0: Fan Network News from the BBC. Grey coverage, vibrant colour, natural finish, all in just 5 minutes. Henna Speedy Easy Hair Colour, made in Italy. Talk 100.3.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: TSB, the essential talk, sport and business across the UAE. The action as it happens with Neil Osher.
3: Hello and welcome to TSB, Talk, Sport and Business. I'm Neil Osher on Talk 100.3. Incredible stuff happening in and around the world. Obviously, IPL khatm hua hai, but ab shuru hone wala hai. The Football World Cup, FIFA World Cup shuru hone wala hai. Saath hi saath, India versus England ki bhi series hone wali hai. Lekin uske pehle India versus Afghanistan ki series hone wali hai. Saath hi saath hone wala hai the Women's World Cup, ICC Women's T20 World Cup bhi hone wala hai. So there's so many things that are happening in the world of sport that are just around the corner. But agar locally dekhen, to Abu Dhabi has freezed rent hike. Ji haan, yani ke commercial rent ho ya residential rent ho, wo sab pe unhone rok laga diye ki nahi, aap koi bhi rent jo hai increase nahi kar sakte hain. This is good news, isn't it? Well, आपकी रेंट का क्या हाल है? कितना पे कर रहे हो और कब से बड़ी नहीं है आपकी रेंट? या आपको लगता है कि हाँ यार हर साल बड़ी रही है? जो भी है, we'll talk about that right here on TSB. I'm Neil Osher.
0: TSB, Talk Sport and Business, Talk 100.3.
3: So, in the view of what is happening currently, it's a fantastic setup that has been happening, and that is Abu Dhabi has announced a temporary rent freeze across the city. So the Emirates Rent Real Estate Center announced that effective June 2nd, yani ke aaj se, effective immediately, all residential, commercial and industrial tenancy contract renewals will be processed at a 0% increase for the duration of the measure. यानी कि अगर आपका कोई रिन्यूअल हो रहा है तो आपको कोई भी रेंटल इंक्रीमेंट जो है नहीं होगा, आपका रेंट जो है वो वैसा का वैसा रहेगा. एनी न्यू टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ प्रीवियसली रेंटेड यूनिट विल बी ऑफर्ड एट द सेम रेंटल वैल्यू एज द प्रीसीडिंग कॉन्ट्रैक्ट विद अ फ्रीज ऑन प्राइस इंक्रीज. द मेजर इज टेम्पररी एंड अंटिल फर्दर नोटिस विद अ मूव कमिंग एज अ रिलीफ टू टेनेंट अक्रॉस द एमिरेट अमिड्स द ऑनगोइंग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट. आई पर्सनली फील that for the ones who are already here in the country, who have been living here in the country, at least from an Abu Dhabi perspective, it's a phenomenal step. क्योंकि आपका जब जब यू नो रिन्यूअल होता है तब तक हमें लगता है यार अब तो बढ़ने वाला है, अब तो बढ़ेगा, ये तो पक्का बढ़ेगा, है कि नहीं. एंड देयर व्हेन कम्स अ स्टेटमेंट कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तो फिर लगता है अरे भाई सुकून हो गया. यू नो करंटली अंडर द अबू धाबी लॉ, लैंडलॉर्ड्स एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज कैन इंक्रीज द रेंट बाय अप टू 5% एनुअली. यानी कि अगर आपका रेंट है समझो 60,000 दिरहम, तो अप टू 5% होता है 3,000 दिरहम, यानी कि मैक्सिमम 60 से मैक्सिमम 63,000 हो सकता है ऑन अ कंटिन्यूअल रेंटल यूनिट. ऐसा नहीं कि आप कोई नई जगह चले जाओगे तो आपको नहीं, ऐसा नहीं. अगर जिस प्रॉपर्टी पे आप हो तो उस प्रॉपर्टी में मैक्सिमम जो है 5% बढ़ सकता है, अप टू 5% बढ़ सकता है. तो यानी कि 60,000 का अगर आपका रेंटल है तो वो न्यू रिन्यूअल के हिसाब से 63 तक जा सकता है. बट इस इंक्रीमेंट पे रोक लगा दी गई है फॉर द करंट टाइम फ्रेम, प्रोवाइडेड आप बड़ा ऑब्वियसली द लैंडलॉर्ड्स एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कैन ओनली इंक्रीज प्रोवाइडेड दे इन्फॉर्म द टेनेंट्स एटलीस्ट 2 months प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल. बट एक ऐसी ये चीज़ जो सामने आई है वो अच्छा है यार, कि कोई रेंट बढ़ेंगे नहीं आपके अगर आप कोई कंटिन्यूअल जगह पे हो, तो चाहे वो रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है या कमर्शियल प्रॉपर्टी है. अबू धाबी ने ये कहा है इफेक्टिव इमीडिएटली अंटिल फर्दर नोटिस देयर विल बी नो इंक्रीज इन द रेंट. बट ये बताइए आपके और मेरी रेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि ना आप अबू धाबी में रहते हो, नहीं अगर रहते हो तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर आपका रिन्यूअल अभी आ रहा तो बेस्ट हो गया आपके लिए. बट अगर आप दुबई में रहते हो, शारजा में रहते हो, अजमान में रहते हो, कितने आपका रेंट बढ़ा था, कितने हज़ार से आपका रेंट बढ़ा था जब आपका रिन्यूअल हुआ था पिछला? क्योंकि जिस हिसाब से बढ़ रहे थे ना, मुझे तो ऐसा लगा था भाई क्या हो रहा है. लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा कि अच्छा कहीं मूव करना चाहिए, क्या करना चाहिए. फिर ऐसा लगा कि नहीं भाई मूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोविड वाले रेंट एरिया में हूँ ना, उस जोन में हूँ. मैंने कोविड के टाइम पर मूव किया था, तो उस टाइम पर जब मैंने मूव किया तो मुझे एक अच्छा रेट मिल गया. उसके ऊपर बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ा है, हर साल बढ़ा है. पर अगर कोई नया टेनेंट मेरी बिल्डिंग में आता है तो उसको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा. जहाँ मैं रहता हूँ उस बिल्डिंग में देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा. तो आई एम टेक्निकली अबाउट यू नो 20-25% मैं कम ही दे रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना. तो एक वो रेंट रिलीफ है थोड़ा सा दिल में. पर आप बताओ 0586861003 पे मैसेज करके कि आपका रेंट कितना बढ़ा पिछले रिन्यूअल में, आपका रेंट कितना बढ़ा. Was it? I mean, obviously, and all of these are controlled increments, you know, as per the location you are in, as per the current pricing of the location that you are in. उस हिसाब से रेंट बढ़ते हैं, ऐसे नहीं रैंडमली कुछ भी नहीं बढ़ा सकते हो आप. रेरा की वेबसाइट पर आके चेक कर सकते हो, ठीक है ना. बट आपका रेंट कितना बढ़ा था 0586861003, दैट्स माय व्हाट्सएप नंबर. क्विकली मैसेज मी एंड लेट मी नो, ताकि मैं पता तो चले कि भाई क्या आर वी ऑन द सेम बोर्ड. एंड इफ यू आर इन अबू धाबी एंड आपका रिन्यूअल इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो फिर तो खुश तो बहुत हो गए तुम. हा हा हा लिख के भेज देना, ठीक है ना. दीपक का मैसेज आया है. दीपक कहते हैं मेरा पिछले दफ़ा रेंट 3,000 बढ़ा था. माई गॉड 3,000 दिरहम्स यार, ये यू नो लगता है ऐसा सुनने में लगता है अरे 3,000 तो है, पर 3,000 चुभता है भाई, है ना. वेरी गुड यार दीपक, बट आई होप दैट यू नो ये साल जो है ज़्यादा ना बढ़े. बट आई कैन अंडरस्टैंड, यू नो 3,000 का इंक्रीज होना कैसा होता है. देर इज़ अ मैसेज दैट्स कम इन फ्रॉम प्रीतम एंड उन्होंने लिखा हा हा हा आई एम इन अबू धाबी. मैंने बोला था आपको लिखो हा हा हा, अगर आप अबू धाबी में हो तो हा हा हा लिखो, ताकि हमें पता चले कि आप अबू धाबी से हो और आपका रेंट नहीं बढ़ रहा है. 0586861003, that's my WhatsApp number. You can always WhatsApp me on this number and we can have a conversation about what is the rent increase that you have faced in the recent time. यानी कि आपका जो सबसे recent renewal हुआ था तो आपका rent कितना बड़ा था. And you know, but ये चीज़ तो है यार कि you know हर जगह पर, हर emirate में अलग अलग structure से बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, कहीं पर ज़्यादा बढ़ जाता है, कहीं एकदम rocket हो जाता है. मैं जब एक time में अजमान में रहता था, तो अजमान में ना फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम दैट आई वॉज इन दैट बिल्डिंग, और मैं कौन सी बिल्डिंग में था ये बताऊंगा नहीं, पर आपको हिंट ज़रूर दूंगा. इट इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन अजमान, 52 माले की बिल्डिंग है, और मैं 50वें माले पे रहता था. मस्त एकदम समुंदर का किनारा दिखता था, उफ मज़ेदार. पर यू नो वो लैंडलॉर्ड बहुत सही था यार. मैं वहाँ पे उस बिल्डिंग में करीबन 4 साल रहा था, वो एक दफ़ा भी उसने रेंट नहीं बढ़ाया, एक दफ़ा भी नहीं, नॉट इवन वंस, है ना. अमेजिंग. सो ये होता है यार, आई मीन यू नो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग चीज़ों का फ़ायदा होता है. बट या यू हैव टू टेल मी कि कहाँ पर बढ़ा है. भाई हमारा भी 10% बढ़ता है. ये मैसेज आया है नंबर 3223 से, नाम नहीं लिखा है उन्होंने, बट हाँ उन्होंने लिखा कि 10% इनका 10% बढ़ा है. 10% कैसे यार, ये तो बहुत ज़्यादा नहीं हो गया. ये दूसरा मैसेज आया है शारजा बुतीना, प्रशांत कहते हैं शारजा बुतीना मार्च में उन्होंने रिन्यू किया, सिर्फ 1000 दिरहम बढ़ा. वेरी गुड यार, ये देखो ये सुकून वाली बात हो गई प्रशांत, है ना, सिर्फ 1000 दिरहम बढ़े हैं. वेरी गुड यार, आई एम सो प्लीज्ड. बट ये 10% बढ़ा यार, थोड़ा आप कहाँ पे, दुबई में हो, कहाँ पे हो आप, थोड़ा अगर हो तो ये थोड़ा चेक कीजिएगा. रेरा के तहत हुआ है कि आपको ऐसे ही बस चूना लगा दिया. प्रदीश का मैसेज आया है, प्लीज़ शेयर द फॉर्मूला फॉर द EOS बेनिफिट कैलकुलेटर. यार वो म्यूरियल बात कर रही होगी प्रदीश, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी EOS कैलकुलेटर्स. एंड वेन एवर म्यूरियल कम्स आई विल डेफिनेटली लेट हर नो टू शेयर दैट कैलकुलेटर विथ यू. बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव एनी सच कैलकुलेटर्स. मैं एंड ऑफ सर्विस की बात ही नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ सीधा भाई इन्वेस्ट करो पैसे, अपना फ्यूचर सिक्योर करो, ताकि अपने को ये एंड ऑफ सर्विस सोचने की जरूरत ना पड़े. ठीक है ना, लाइक आई जनरली थिंक दो कदम आगे, ताकि फ्यूचर सिक्योर करना ज़रूरी है, अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना ज़रूरी है, और सही तरीके से इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, ताकि एंड ऑफ सर्विस क्या है क्या नहीं है सब इतना इतना ज़्यादा नहीं सोचने का, है कि नहीं. ओके, फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि आपकी रेंट्स कितने बढ़े हैं इन द रीसेंट रिन्यूअल. आपने आपका रेंट कितना बढ़ा था. देर इज़ अनदर मैसेज दैट्स कम इन फ्रॉम शिवा. शिवा कहते हैं मेरा 2500 बढ़ा रेंट. 2500 यार, ये वही मुझे लगता है 2500-3000 जो है ना, थोड़ा सा साइजेबल लगता है, आई मीन लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया. सैलरी 3 साल से नहीं बढ़ा. ये बात तो सही है यार. इनफैक्ट ये चीज़ जो है ना, आई एम श्योर कि अगर हम कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे ना कि कितने साल से सैलरी नहीं बढ़ी वर्सेस कितना आपने रेंट बढ़ा के दिया है, उसमें तो भाई सब लोग यही कहेंगे ना, आई एम सो श्योर दैट पीपल विल अग्री कि भाई 3-4 साल से सैलरी नहीं बढ़ा. यहाँ पर मुझे लग रहा था कि इस साल बढ़ जाएगा, तो फिर भाई ये हो गया, अब क्या कहें, अब जो हो गया हो गया, उसके चलते अपनी भाई संभाल लो, ऐसे ही चल रहा है और क्या है कि नहीं. नकाश का मैसेज आया, नकाश का मीम आया है यार, ये सही है. यहाँ पार्ले जी खाना पड़ रहा है हमारी चाय में. भाई काली चाय में फिर भी तुम डुबा तो रहे हो. हम जब छोटे थे ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. एंड आई डोंट नो इफ दिस इज़ अ कॉमन थिंग, बट हमने किया है. ठीक है ना, आई मीन आई डोंट कम फ्रॉम अ यू नो वैसा रईसों वाली फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी यार, के बस यू नो थोड़ा बहुत जो है पॉकेट मनी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था. क्रिकेट खेलने के लिए भेजते थे पेरेंट्स, क्योंकि वो भी बहुत सस्ता हुआ करता था, बहुत ज़्यादा सस्ता हुआ करता था. वो स्कॉलरशिप मिल जाती थी अपने को. ठीक है ना, तो जब जाते थे ना, तो वहाँ पर ऑब्वियसली यार ये क्या प्रोटीन और ये बादाम वदाम ये सब खाने के पैसे थोड़ी होते थे. तो वहाँ पर हम पार्ले जी खाते थे, सबसे सस्ता बिस्कुट मिलता था पार्ले जी. और मम्मी ने तो बचपन में सिखा के रखा था चाय वाय पीनी नहीं है, तो पार्ले जी किस में डुबा के खाएंगे, दूध में थोड़ी डुबा के खाएंगे, इतनी रईसी थोड़ी थी. तो हम पार्ले जी ना पानी में डुबा के खाते थे. मज़ा आता है, कभी ट्राई करके देखो. खाया है पार्ले जी पानी में डुबा के. तो ये नकाश का जो मैसेज है ना, यहाँ पार्ले जी खाना पड़ रहा है काली चाय में डुबो कर. भाई काली चाय भी छोड़ो, पानी में डुबो कर खा के देखो, कभी मज़ा आएगा. ऐसे बचपन की याद ताज़ा हो जाती है. ये पार्ले जी उठाओ, एक ग्लास पानी लो, उसमें डुबाओ और खाओ. आई नो इट साउंड्स लाइक कि हम बिस्किट को पानी में डाल के कर रहे हैं, बट पार्ले जी हैड्स हिज ओन क्वर्क्स इन इट्स ओन वे. बट या वी टॉकिंग बेसिकली अबाउट द रेंटल इंक्रीमेंट और रादर द नॉन इंक्रीमेंट ऑफ रेंट्स इन अबू धाबी, जिस पे फ्रीज लगा दिया गया है. अबू धाबी में कहा गया है कि दी अबू धाबी म्युनिसिपैलिटी यूजेस अ सिस्टम कॉल्ड तौथीक to keep a record of tenancy contracts and data related to the property being leased, providing legally binding records to protect both tenants and the landlords, and it's mandatory for everyone to go through it while registering and attesting all residential and commercial contracts. So, aapka residential hai, commercial hai, ya industrial contract hai, jo bhi hai, agar renewal ho raha hai aapka Abu Dhabi mein, to aapka renewal pe koi increase nahi hoga. Jo bhi pichle aapke rent hai, wahi rent pe aapko abhi renewal hoga for द टाइम बींग. यानी कि अब तक वो बताया नहीं गया है कि कब तक, बट टिल द टाइम दे कन्फर्म एंड से क्या चलो ठीक है अब से बढ़ सकता है, तब तक एटलीस्ट जो है ये मेजर जो है वो टेम्प्ररी है एंड अनटिल फर्दर नोटिस आप तक लागू है. तो अगर आप अभी अबू धाबी में रहते हैं एंड यू नो अभी आपका रिन्यूअल आने वाला है, तो यार आई एम डेफिनेटली फीलिंग दैट यू आर लकी कि आपका एटलीस्ट रिन्यूअल के टाइम पर आपके पैसे नहीं बढ़ रहे हैं. बट हाँ, आपके और मेरे कितने बढ़े हैं जल्दी से बताइए. 0586861003 इज़ माई व्हाट्सएप नंबर. यहाँ पर मुझे बताइए कि कितने कितना रेंट बढ़ा है आपका पिछले रिन्यूअल में, हाउ मच इंक्रीमेंट डिड यू पे ऑन योर रेंट्स, एंड यू नो जैसे मैसेज यहाँ पर आया था 3223 का भाई के सैलरी 3 साल से नहीं बढ़ा पर रेंट हर साल बढ़ रहा है, आपका भी यही हाल है क्या? 0586861003 दैट्स माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन ऑलवेज कॉल मी ऑन 800-8100-3, 800-8100-3 ये टोल फ्री नंबर है। टोल फ्री नंबर का मतलब ये होता है कि इस पे कॉल करने के आपको पैसे नहीं लगते हैं। यू कैन ऑलवेज पिक अप द फोन, जस्ट कॉल 800-8100-3 और मैसेज मी ऑन 0586861003 एंड व्हाइल यू डू दैट ऑब्वियसली व्हाट आई विल डू, 6-year-old मी 3 दिन पानी में बिस्कुट डुबो कर खाने के बाद शुरू में मजबूरी में किया, मज़ा आने लगा। बिल्कुल ये मीम भेज रहे हैं, देखो ये यार नकाश है ना, एकदम ज़बरदस्त मीमर है, ऐसे मस्त वाले मीम बना के भेजते हैं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यस लिटरली ऐसा ही है कि वो 3 दिन है ना सर मजबूरी में खाना पड़ता था, लगता है यार क्या क्या खा रहा हूँ। जब पहली बार खाया था तो ऐसे ही लगा था कि क्या है पार्ले जी, पानी में डुबा के कौन खाता है, बट आफ्टर अ फ्यू डेज बॉस इट बिकम्स लाइक अ पार्ट ऑफ योर सिस्टम। फिर नहीं खाओ तो ऐसा लगता है कुछ अधूरा है, बिस्किट ऐसे ही खाओ तो रूखा सूखा सा लगता है। ट्राई करके देखना कभी, और अगर ट्राई नहीं किया तो फिर नहीं, अगर ट्राई किया तो बताओ 0586861003 पर। बट आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ यू वुड हैव ट्राइड इट, है ना? There's a very, I don't know if it's a very Bombay thing or if it's a very lower middle class गरीब thing जो हमारे experience था कि भाई जो है ना पानी में डुबा के बिस्किट खाना पड़ता था। फोन लाइन पे अभी कौन है हमारे साथ? हेलो
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं अरीद हसन।
3: हाँ जी सर, बताइए कैसे हो?
2: कैसे हैं? ठीक है,
3: ऑल गुड यार, ऑल गुड। आप बताइए क्या चल रहा है, कहाँ पर हो, कितना रेंट बढ़ा है, सैलरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है?
2: बस क्या बताएं आपको, सैलरी तो बढ़ी नहीं है लेकिन शुक्र है रेंट बढ़ गया।
3: रेंट बढ़ गया, शुक्र है भाई। आप पक्का लैंडलॉर्ड लग रहे हो जो कह रहे हो शुक्र है रेंट बढ़ गया। कितना बढ़ गया रेंट आपका?
2: नहीं, मैं भी एक मतलब लेबर आदमी हूँ, तो बस कंपनी ने पिछड़ नहीं बढ़ाया, लेकिन ये है कि रेंट बढ़ा है काफी
3: ना, रेंट बढ़ गया ना यार, यही तो तकलीफ है।
2: 200 बढ़ा रेंट
3: यार, देख यही है ना कि रेंट बढ़ते जा रहे हैं और सैलरीज नहीं बढ़ रही है। बहुत ही अनोखी चीज मुझे सामने बता दी उन्होंने, एंड क्या कहते हैं, बट ठीक है, चलो अच्छी बात है, इंशाल्लाह यू नो सैलरी भी बढ़ जाएगी और रेंट की जो इंक्रीमेंट है वो भी रुक जाएगी। दुआ करते हैं आपके
2: जी,
3: लिए
2: इंशाल्लाह,
3: सब सबके लिए दुआ करते हैं, आपके लिए क्यों, सबके लिए दुआ करते हैं।
2: अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, सबको जो जो दुबई में है, इंशाल्लाह हमारी भी सैलरी इंक्रीज होगी।
3: बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर
2: होगी।
3: अरे क्या बात है, माशाल्लाह वेरी नाइस
2: जी, आपका हम सारे शो देखते रहते हैं तो बड़ा अच्छा फील होता है।
3: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी आवाज सुनकर, थैंक यू सो मच। ताकि मुझे थोड़ा सा चाय वाय पीने का टाइम मिल जाए बीच में, पर उसके अलावा मैं गाना बजाता ही नहीं, मैं सिर्फ बात करता हूँ, तो सुकून से ऐसा पेट भर के बातें सुनिए मेरी आप। ओके
2: जी जी, चलिए ठीक है,
3: थैंक यू सो मच, थैंक यू यार, गाने की फरमाइश कर दी, यानी कि दिस इज क्लासिक ओल्ड स्कूल रेडियो, यू नो वेयर पीपल एक्चुअली कॉल यू टू स्पीक टू यू एंड देन दे वांट टू लिसन टू अ सॉन्ग, बट अनफॉर्चुनेटली We don't play songs. We have conversations. हमारे show का हमारे जो station it's called Talk 100.3, यानी कि where we basically you know talk, right? Neil भाई, अरे wait, hang on, ये कौन है आप? Number पहले अपना नाम बताइए, number ending with 3223, क्योंकि उन्होंने मेरे नाम का spelling सही लिखा है यार। Neil भाई, मैं भी जब बहुत कम हो गया था तभी लिया था इसके लिए last Jan में 10%। अच्छा, ओ शाबाश, वैसे करामा एरिया में, ओके हाँ, तो उन्होंने भी तब क्या कहते हैं रेंट पे लिया था जब रेंट बहुत कम हो गया था, फिर अब सडनली बढ़ा दिया है इनका। अच्छा, तो इसलिए 10% बढ़ाया आपका। बट आप यार, आपने अपना नाम नहीं बताया, मुझे अपना नाम बताइए, क्योंकि यू गॉट माई स्पेलिंग राइट यार। बहुत रेयर होता है कि मेरा स्पेलिंग जो है लोग राइट टाइप करते हैं, इट्स ऑलवेज टू बी रिटन एज NEEIL, तो वो बहुत कम लोग करते हैं, सो जो करते हैं मुझे अच्छा लगता है। दिस इज वेरी वेरी नाइस। ओके, तो चलो भाई जल्दी से आप लोग क्या कहते हैं मैसेज कीजिए 0586861003। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हम में से हाउ मेनी ऑफ अस हैव फेस्ड एन इंक्रीज इन रेंट इन द रीसेंट टाइम्स, आई मीन लास्ट रिन्यूअल पे कितना आपका रेंट इंक्रीज हुआ था, बिकॉज अबू धाबी में आया है न्यूज़ के स्टार्टिंग टुडे इफेक्टिव इमीडिएटली रेंट इंक्रीज नहीं होंगे अगर आपका रिन्यूअल अभी है तो। उमेश, थैंक यू सो मच उमेश, आपने अपना नाम भी लिखा है और मेरा नाम का स्पेलिंग भी सही लिखा है. थैंक यू सो मच उमेश. देखिए शाउट आउट मिल गया उमेश को सही स्पेलिंग लिखने की वजह से. वेल डन उमेश. ओके सो यू सेंड इन योर मैसेजेस एंड आई विल टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक राइट हियर ऑन टॉक 100.3 अ पार्ट ऑफ द फन एशिया नेटवर्क राइट हियर ऑन टीएसबी.
0: टीएसबी टॉकिंग स्पोर्ट्स बिजनेस एंड मोर. टॉक 100.3. Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business. Talk 100.3. The Journal on TSB. The latest share market and stock market news and updates on Talk 100.3.
3: Hello and welcome to TSB Talk Sport and Business. I'm Neil Oja on Talk 100.3. We'll have a check on what's happening in the financial market. Dubai Financial Market General Index closing today 0.73% lower. Talabat maintaining its upward trend even today, going up by 1.63%. Emaar down by 0.69%. Emaar Developers down by 0.29%. Emirates NBD, the bankers, down by 1.69%. And Deva also down by 1.53%. इसका मतलब यह है कि बिल भरने का टाइम आ गया. बिल भरो, देखो इनका स्टॉक सुपर जाएगा. नील के साथ रहिए ऑन टीएसबी टॉक स्पोर्ट एंड बिजनेस.
0: दिस इज टीएसबी द होम ऑफ टॉक स्पोर्ट एंड बिजनेस. दिस इज टॉक 100.3 टीएसबी बिजनेस एडवाइस टिप्स एंड रिसोर्सेज. टॉक 100.3.
4: Hello, I'm Nick Marsh with the BBC Business Updates. The United States has issued a notice affirming its restrictions on shipments of computer chips to subsidiaries of Chinese companies located outside China. The Department of Commerce said in guidance issued on Sunday that its licensing requirements for the export of advanced artificial intelligence chips applied to all businesses with headquarters or a parent company in China. According to reports in US media, research on the loopholes being exploited have been circulating in Washington in recent days. Meanwhile, Nvidia has announced a new chip for personal computers as it moves into the consumer market for devices integrated with artificial intelligence technology. The company's chief executive, Jensen Huang, unveiled the RTX Spark chip as he delivered a keynote speech ahead of the opening of the Computex Technology Show in Taipei. Stock markets are continuing to reach new heights as heavy investment in AI continues, apparently unabated. In spite of the war in the Middle East, both the S&P 500 and the Nasdaq indexes closed at record highs on Friday. Not for the first time, it's raised the question of whether a bubble may be forming. Here's Fiona Cincotta, a senior market analyst at City Index.
5: It's very difficult to know when you're in a bubble until you're coming out of the bubble. But there are a few signs that we do just need to be a little bit cautious about. And I think, you know, that's rising valuations. Valuations are very high. So the S&P 500 is trading at 21 times expected earnings. That's above the 30-year average of 17. There's a reason for caution there.
4: And oil prices rose more than 2% in Asia trade today after Iran and the US traded strikes and Israel ordered troops to move further into Lebanon. Even so, the price of Brent crude is still hovering at around $93 a barrel, much higher than before the war started, but relatively low compared to other points of the war, as traders wait on a possible deal between the US and Iran. I'm Nick Marsh. I'll be back tomorrow with the next BBC Business Update.
0: This is Talk 100.3.
3: Hello and welcome to TSB Talk Sport and Business. I'm Neil Oja on Talk 100.3. Just got this news right now that there is a Nepalese citizen who's won 30 million dirhams ka grand prize in the Lucky Day draw. ओ माई गॉड भाई, ये क्या बात है. सो दिस इज़ द सेकेंड ग्रैंड प्राइज जो यूएई की लॉटरी जो है, यूएई लॉटरी विच इज़ द रेगुलेटेड लॉटरी इन द यूएई, 30 मिलियन दिरम्स जीता है भाई ये. 30 मिलियन दिरम क्या मजाक होता है. सो अगेन एन अबू धाबी रेजिडेंट, यानी कि भाई अबू धाबी वालों के कुछ तो सही चल रहा है अबू धाबी वालों का, यानी कि एक तो उनका रेंट जो है वो बढ़ने से रोक दिया गया है कि अब रेंट नहीं बढ़ेगा, एंड देन अनदर अबू धाबी रेजिडेंट हैज गॉन ऑन टू विन 30 मिलियन दिरहम्स इन द यूएई लॉटरी जैकपॉट. 30 मिलियन दिरहम्स इज इनसेन. आई मीन जस्ट थिंक ऑफ इट कि अगर 30 मिलियन दिरहम्स आपको मिल जाए, सोचने में क्या जाता है. बिकॉज अगर आप सोचोगे, वो कहते हैं ना द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, है ना, सुबह सुबह उठते ही पहली चीज़ यही सोचो, पूरा दिन ये सोचो कि भाई 30 मिलियन डॉलर की लॉटरी, 30 मिलियन दिरहम की लॉटरी मुझे लग जाए. बट उसके लिए लॉटरी भी लेनी पड़ती है, ठीक है ना. हम सिर्फ सोचेंगे तो नहीं होगा, आपको लॉटरी भी लेनी पड़ेगी. बट अगर आप ऐसा सोचते हो एंड अगर लॉटरी लग जाए किसी दिन, ठीक है ना, तो ऑल ऑफ अ सडन जब इतना पैसा आता है ना, तो पता है क्या होता है. एक तो यू गेट इन टू द जोन ऑफ अनबिलीवेबल माइंड सेट. That you can't believe, you feel that it's a scam, it's random. You know, वो Nigerian prince call करता है ना आपको, ई मेल भेजता है कि मुझे मेरा पूरा जायदाद आपको दे दी है. तो पहले तो ऐसा फील होता है कि नो यू कैंट बिलीव इट. ओके, आफ्टर दैट वंस यू रियलाइज दैट नो इट्स राइट, इट्स ट्रू, देन यू स्टार्ट टू समवेयर फील द प्रेशर ऑफ द मनी, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन यू डोंट नो वॉट टू डू विद दैट काइंड ऑफ मनी. Right, 30 million dirhams is no joke. It's a humongous amount of money. That's like generational changing money. It's not life changing. 30 million se sirf aapki life change nahi hogi, aapke aane wale generations ki life change hogi. Agar aapne sahi tarike se paise ko invest kiya to. There have been cases in the past, historic cases. UAE ki baat nahi kar raha, main US ki baat kar raha hu, jahan pe ye lottery system bahut zyada prevalent hai. US mein, UK mein, ke jahan par million dollars ki lottery lagi hai, ठीक है, और मल्टी मिलियन डॉलर्स की लॉटरी लगी है और लोगों को समझ में नहीं आया क्या करना है. देन दे हैव गॉन अहेड एंड स्पेंट इट लाइक क्रेजी, यू नो, बड़ी बड़ी गाड़ियां ली है, रैंडम से कपड़े लिए हैं, ब्रांड्स खरीदे हैं, फैशन ब्रांड्स, लग्जरी ब्रांड्स, जूते ऐसे जो यानी कि कभी नाम बोलने नहीं आए, वैसे वैसे कपड़ों के ब्रांड्स खरीदे हैं. एंड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स दे आर बैक टू जीरो फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड. दे आर लिटरली बैक टू दैट बिकॉज दे डिडंट नो हाउ टू यूज दैट मनी, बिकॉज either they were in a shock and they did not want to employ someone to manage that money, or for that matter they didn't have the knowledge themselves how to use that money, and they thought that this money will last forever. But then kya hota, I'll tell you, and why does this happen. It's a serious case study ki whenever you and I who make a fixed salary every month, we know that ki theek hai itna paisa aa raha hai, isse hum itna kharcha karenge, itna hum save karenge, itna hum future ke liye rakhenge, itna invest karenge. We know how to manage that, you know, 5000, 10000, 20000, 50000, whatever is your monthly salary, you know how to manage that. But all of a sudden someone comes and says ki listen, there is this bonus of 100000 that I want to give you. You will not know what to do with 100,000, let aside a million, and forget 30 million dirhams. When 30 million dirhams come to you, I'm telling you, you don't know what to do with it. Unless you're a financial advisor or your friend is a financial advisor, or you employ a financial advisor and say, listen, bhai, ye 30 million hai, usme se aap 1-2% le lena, jo bhi hai, but mujhe batao ke main ye paiso ka kya karu. Right? I'm telling you, you would not know, and you'll probably end up spending it and not making the best out of it. Unless you want to challenge me, unless you want to tell me, yes, I have the best knowledge and I know what to do with it, 0586861003, tell me what would you do. That's my WhatsApp number, by the way. Ye number mera WhatsApp number hai, aap ispe WhatsApp kar sakte ho. Okay, if you get 30 million, jaise ki ye bhai sahab ko mila jo Nepal ke hain, theek hai, he's won the 30 million dirhams grand prize. He's a Nepalese resident, okay, Abu Dhabi based Nepalese resident, jinhone jackpot jeeta hai. And I just hope that, you know, he manages money well, achhi jagah invest kare. But more often than not, people who make that kind of, win that kind of money, end up spending it in the wrong way. And by the wrong way, I mean, see, aap unka paisa, unki marzi jaise spend karna hai kare. Theek hai, but what, when I say wrong way, I primarily mean to say that in depreciating assets, in things that will not gain you anything out of when you spend. And that is where things go wrong. Okay, and I'm open to have a conversation with you. You can call me on 800-81003 and tell me, if you were to win something like this, generational changing money, 30 million dirhams, to kya karoge aap us paise ke? How will you invest? How will you spend it? What will you do about it? Yeah, because I'm telling you, it's never too easy गुड आफ्टरनून, देयर इज अ मैसेज दैट्स कम इन फ्रॉम ABS. सिर्फ इतना, गुड आफ्टरनून लिखा है उन्होंने, ठीक है ना. बिकॉज द फर्स्ट थिंग दैट यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक द फर्स्ट थिंग दैट यू वुड वांट टू, यू नो, यू विल से के आई विल क्विट माय जॉब. देखो नहीं चाहिए, ये बॉस ही नहीं चाहिए मेरे को, मेरा बॉस दिमाग खाता, मेरा मैनेजर मेरा दिमाग खाता रोज, मुझे चाहिए नहीं, उसकी शक्ल नहीं देखूंगा मैं. आई विल क्विट माय जॉब द वेरी नेक्स्ट डे आई रिसीव माय मनी. दैट कुड बी द फर्स्ट थॉट, राइट? व्हाट इज द फर्स्ट thought, first instance that comes to your mind when you think that you will make 30 million dirhams in jackpot money, theek hai, lottery mein jeet gaye ho aap, and then what do? I think this is a very interesting conversation that I want to have with you. You can always message me, 0586861003. There's a message that's come in from Swati. She says that I will put it in FD. Ooh, Swati, galat jawab. I mean, yeah, it's a safe way to put in money, park your money, but you think FD is the best way? FD में कितना मिलता है? 3%, right? 3% आपको FD में मिलता है, और आपका जो inflation है वो चल रहा है 5.5-6% के हिसाब से. So every year you actually making less than the inflation. You're losing money. You're losing the value of money. I mean, yes, you're making 3%. Yes, but you're losing the value of money because inflation is eating out on your interest in FD. So FD, it's okay for grandpas and grandmoms, you know, जो easy जाना चाहते हैं, ठीक है, चलो FD में पढ़े हुए. एंड वो भी, यू नो, इंडिया जैसे, प्रॉब्ली इंडिया में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे 8% मिलता सीनियर सिटीजन्स को, तो ठीक है, यू इट्स स्टिल प्रॉब्ली 2% मोर देन द इन्फ्लेशन, यू स्टिल मेकिंग 2%, फेयर. बट FD इज ओवर हियर इन द UAE 3-3.5%, उससे ज़्यादा क्या मिलेगा आपको? आई डोंट थिंक इट्स अ फेयर कॉल, आई रियली डोंट थिंक. चलिए, मैसेजेस भेजे 0586861003 पे. यू मेक 30 मिलियन दिरहम्स इन अ लॉटरी. जैसे अभी अभी अनाउंस हुआ है कि अबुधाबी के रेजिडेंट एक नेपाल के सिटीजन को जो है, ही इज वन 30 मिलियन दिरहम्स का जैकपॉट. यू मेक 30 मिलियन दिरहम्स इन अ जैकपॉट, व्हाट विल बी योर फर्स्ट थॉट? व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू? वेयर विल यू पुट योर मनी? व्हाट इज दैट प्लान? Let's discuss that plan. I'll take a quick short break and be right back, and we'll talk about this in detail. Meanwhile, you can always message me on 0586861003. Let's talk money, let's talk finance, and let's be prepared. For all you know, one day when you make that kind of money, you'll be ready. You'll be thinking, ah, we had this conversation with Neil on TSB. Today is the day it's all coming to use, right? Neil ke saath on TSB. We'll take a quick short break and be right back on Talk 100.3.
0: This is Fan Network News from the BBC.
1: BBC News with Emily Thomas. Ukraine says at least 15 people have been killed in a massive drone and missile attack by Russia. The Interior Ministry said the worst civilian damage was in Dnipro and Kharkiv in the east, and in Kyiv, which was pounded by a barrage of strikes. A partial ceasefire between Israel and Hezbollah, which President Trump announced on Monday, appears to be largely holding. A BBC correspondent in northern Israel says last night was relatively quiet by recent standards. There's been no fresh Israeli attack on Beirut, though some fighting in southern Lebanon. The World Meteorological Organization is warning that this year's El Niño weather pattern is very likely to develop into one of the strongest on record. The rare super El Niño is expected to cause surging global temperatures and extreme weather around the world. The European Parliament's International Trade Committee has approved a deal to remove tariffs on hundreds of US goods. It's a significant step towards implementing an agreement drawn up with the US, but still needs to be approved by the full EU Assembly. At least two people have been killed in protests against a US-backed Ebola quarantine centre near a military base in central Kenya. The victims died from injuries after clashes with police on Monday. Kenyan officials have not yet commented. The government of Mozambique says that five of its citizens have been killed in South Africa in what it called xenophobic attacks. They're the first deaths officially linked to weeks of anti-migrant protests. Local people have been calling for tougher action against undocumented migrants. Florida has become the first US state to sue OpenAI over the design and safety of the company's artificial intelligence chatbot, ChatGPT. The lawsuit alleges the company is endangering children. OpenAI deny wrongdoing. World News from the BBC.
0: Fan Network News from the BBC. Talk music. Brought to you by Insurance.

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

0: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो चलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ पाई?
1: हाँ तो हो जाए
0: हो जाए।

0: This is Talk 100.3.
1: सुनो और गौर से सुनो। अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूँ और गाने में ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।